0: जेकर सूतक मनिए सबते सूतक होए, गोहे अत लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए, सूत क्यों कर रखिए सूत पवैर सोए, नानक सूत केव न उतरे ज्ञान उतारे तोए महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक, अखी सूतक वेखना पर त्रै पर तंदूप, कन्नी सूत कन पहला तिवारी खाहे, नानक हंसाय आदमी बद्ध है जमपुर जाए महला पहला।
0: सब सूतक परम है दूजा लगे जाए, जमन मरना हुक्म है पाणे आवे जाए,
1: खाना पीना पवित्र है दी तौंद जिक संभाहे, नानक जिनी गुरमुख बूझया तिना सूतक ना है।

सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जग और न जाहे महातम मैं अवतार जागरयान किया इनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पिया ए पद्धत ते मत

जल जोगन ते बहु पात बचावे। सत्र अनेक चलावत काव, तौ तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दे कर, पाप संभू।

0: पुजर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दास निदास तुदे अगे बिनवता।
1: सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुदाई दया खेले सगल जगत।

सेवकान को सेवकुन सुख दियो, सतरन को पाल मोह पद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते

दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करोरण काता जे अस भुजता विसरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जावन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्य है ताके काल निकट न आहै।

हमरे मन चित हरास नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा आओ गुरबानी गुर अपने जिन बिछड़िया मिलिया मेरा सिरजनहारा मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार मत निर्गुण हम मेला कबहूँ अपनी कृपा तार हमरे अवगुण बहुत बहुत है बहु बार बार हर गणत नावै तू गुणवंता हर हर दयाल हरा पे बख्श लै हर भावै हम अपराधी राखे गुर संगति उपदेश दियो हर नाम छड़ावै तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुरु बोले तब विस्म हो जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंध पमेरा सखा सखाए।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कार कीरत आखिए करते का होए बिचारो तित कार गावह सोहेला सिबरह सिरजनहारो तुम गावह मेरे निरभउ का सोहेला हौ वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ।

दीपक बने तारिका मंडल जनक मूर्ति धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होय भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस्ताव नैन नन नयन हह तो हे कौ सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन सहस तब गंध एव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानण सब मह चानण होए।

थोड़ी बिन सतगुरु कि ना पाया, बिन सतगुरु कि ना पाया, सतगुरु चाप रखियन कर प्रगटा सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया, उत्तम विचार है जिन सच्चे सिओ चितलाया।

0: सेब गवाई है, सेब गवाई है, सेब गवाई है।
1: औड़ी दान महंडा तली खाक जय मेरे ता मस्तक लाई है। कूड़ा लाल छड़िया होई कमान अलग ते आई है। पालते वे हो पाई है जवे ही कर कमाई है। जे हो वे पुरुग लिख्या ता तूरती ना दी पाई है। मात थोड़ी सेव गवाई है, मात थोड़ी सेव।

0: 사츠마야 사츠마야 사츠마야
1: 어리 뚜르 카람 제나 그뚜드 파야 타티니 카참케 아야 एना जनता के बस किस नहीं तू देवे की जो तू पाया इतना लोक मेला का बहुत दुख आया गुरु कृपा दे जाने जिथे तू दा बुझाया सहजे ही सत समाया सहजे ही सत

गुरु सत जियो गुर कहया मान निज निधान सच जान मंत्र एह निसपासर होए कल्याण लहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यो साड़ तो हुमे का फंद काट साध संग रत जियो ते कह त्रेस ने चित बिलास जगत है चरण कमल सदा सेउ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही हे तार तज विकार मन गए अंदो श्री गुरु श्री गुरु।

दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया अनेक बीग दास के पर हरिया।